तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत राम भरोसो एक। गोस्वामी जी कहंदे ने कि विद्या विनय ज्ञान उत्साह पुन्य ते सच, ये सारा कुछ जदों विपत्ति साढ़े ते आउंदी है तां ओह विपत्ति च साथ देण वाले गुण ने, ते ये सब कुछ असी सिर्फ ते सिर्फ उस परमात्मा दे उस दे भरोसे ते रह के ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं।

0: बोलो पवन सुत हनुमान की जय।
1: तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। पाप पुण्य दो बीज हैं, बुवे सोलुने निदान। ये जो मानव शरीर है, ये एक खेत दे समान है। तुलसीदास जी कहंदे ने, इस साडा जो मन है, इस शरीर नू ओ खेत दे समान दस के मन नू कम करन वाला किसान दसदे ने। तुलसीदास जी कहंदे ने, पाप ते पुण्य ये दो तरह दे बीज ने। ते इंसान जिद्दां दा कर्म रूपी बीज बोंदा है, अंत दे विच उहनू फल ओदां दा ही मिलदा है। इसे करके कहंदे ने कि परमात्मा दा नाम सिमरन दा बीज इंसान दे मन अंदर बीजिया रहना चाहिदा है।

कुछ तो आज थोड़ी हवा भी सर्द थी, कुछ तो तेरा ख्याल भी था, दिल को खुशी के साथ साथ आज कोई मलाल भी नहीं था, क्योंकि आज वही दिन था जब तुमसे मुलाकात का खत्म होना इंतजार था। वाह वाह वाह, ले की मैं तुकबंदी करके क्या शायरी बोल देती है सुरे सुरे। अच्छी लगी कि नहीं लगी? ना लगन का तो सवाल हो ही नहीं सकता। शायरी मैं चाहे ऑन द स्पॉट बनाई होवे, कोई लाइन कोई अखर की तो चक्या होवे, लेकिन देखो कितनी खूबसूरत शायरी बना देती ना सिर्फ और सिर्फ तुहाडे लई। सो जी नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग एंड फुल ऑफ पॉजिटिविटी वाली हैप्पी हैप्पी मंडे मॉर्निंग तुहानू सारयां नू। मैनू पता है कि मंडे मॉर्निंग बड़ी हैवी जी लगती हुंदी है, बड़ा नैचुरल जिहा है जो आराम दे नाल तुसी संडे दी मॉर्निंग इंजॉय कीती होवे पूरा वीक बहुत ज़्यादा काम करके। और कई बार काम इदा दा हुंदा कि चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी दे विच उस काम नू आपां गिणा होवे, लेकिन ऑफिस दा काम तो ऑफिस दा ही हुंदा है, है ना। हाँ जी, की क्या तुसी ट्रैकिंग ते चले गए सी? चलो, मतलब लत्ता ने तो काम किया है ना। सो जी।

बॉडी थोड़ा जा हो रिलैक्सेशन मांग रही है, पर कोई गल नहीं, मंडे मॉर्निंग है तो उठना भी पैना है, काम ते भी जाना पैना, ते काम करना भी पैना है, कोई गल नहीं। आपां बुझे मन दे नाल ही, खिड़े खिड़े मन दे नाल इस प्यारी जी खूबसूरत बड़ी ही ब्लेस्ड जी मॉर्निंग का स्वागत करना है। ठीक है, चलो उठो उठो, शाबाश। बाहर देखा मौसम कितना खुशनुमा होया पिया है, नहीं देखा तो फिर उठ के देखो, क्योंकि नवी समीर नवीं उम्मीदा ते नवी पॉजिटिविटी ते एक फ्रेश जई स्माइल दे नाल स्वागत कर दिया मिलजुल के आज दी इस प्यारी जी मॉर्निंग दा, क्योंकि तुसी सुन रहे हो तुहाडा अपना प्यारा जिहा रेडियो दा साथ है तुहाडे नाल, यानी कि ट्यून की तरह तुसी एफएम रेनबो 102.7 ते नाल दी नाल 103.6 ते, और जो दोस्त सानू न्यूज ऑन एआईआर ऐप दे जरिए सुन रहे ने देशां ते विदेशां दे कोने कोने च, तुहाडा ते स्पेशल थैंक यू है जी। कईयां ने ते सवेरे सवेरे अपडेट पहुंचा दी है कि ओ देश दे दूर

के प्रोग्राम सुन रहे ने दूरो दूरो, कोई कनाडा तो सुन के मैसेज कर रहा है ते कोई सानू हैदराबाद तो सुन के मैसेज कर रहा है। सिरे सिरे वॉक ते भी चले गए हो और कई ते लेजी हजे भी मतलब सुते हुए हैं। 7:31 हो चुके ने, गुड वाली मॉर्निंग हो चुकी है। जिवें हैप्पी वाला बर्थडे हुंदा है ओदी गुड वाली मॉर्निंग हुंदी है, ते खास करके ओदो गुड वाली मॉर्निंग बनती है ते जदो ओ मॉर्निंग हुंदी है एफएम रेनबो दे नाल, और नाल होवे तुहाडी पूजा टोहानी। मेरी कोशिश होंगी है कि वो वाली मॉर्निंग आने जी ज़्यादा अच्छी अच्छी वाली और एनर्जेटिक होवे। सो चलो चलो चलो जल्दी दे नाल चेहरे पे स्माइल लेके आओ। ठीक है, मैनू पता है तुहानू इंतजार किसी चीज़ का है और कह रहे हो कि मैं तुहानू गल्लां दे विच घुमाई जा रही हाँ। कोई गल नहीं, गल्लां भी तो करन ही होंदियां ने, तो घूमना घुमाना भी तो घूमन नू ही हुंदा। फिर की है, कोई जाके घूम लैंदा तो कोई मेरी गल्लां नाल ही घूम लैंदा। चलो कोई गल नहीं, असी वापस ट्राई करेंगे साढ़े अज के मेहमान नू फोन लाइन ते लेके आउण दा, लेकिन जो तक असी कनेक्ट नहीं कर पाते मैं हैगी है ना तुहाडे नाल। हुण पता लगा मैं क्यों क्या समझदार कोई इशारा काफी, समझदार तो तुसी बहुत ज्यादा हो पता मैनू। सो चलो कोई गल नहीं, मैं हाँ तुहाडी अपनी ते तुहाडे दिलां दी आवाज़ दे नाल यानी कि एफएम रेनबो दे नाल आरजे पूजा टोहानी, और आ रही हैं जी बहुत सारी क्यूट जी स्माइल्स दे नाल, स्टोरीज ते सोलफुल वाइब्स दे नाल एंड लॉड्स ऑफ पॉजिटिविटी दे नाल अगली इन्फॉर्मेशन लैके। सो आज है जी 11 मई, लेकिन 11 मई 2026 है आज का दिन, लेकिन मैं गल करन जा रही हूँ 11 मई 1888 नू। वाह व्हाट अ नंबर 1888। 1888 11 मई नू जन्म होया सी एक बहुत ही महान शख्सियत दा, जो कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और भारत के एक ऐदां दे प्रसिद्ध वकील रहे, भारतीय वकील जिन्हां दा लोहा पूरी दुनिया ने मन्या। वो भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राजदूत भी रहे। उन्होंने उड़ीसा के राज्यपाल के रूप के भी काम किया। गल मैं कर रही हाँ असफ अली जी दी। जी हाँ, आज बर्थ एनिवर्सरी है असफ अली जी दी भी। ब्रिटिश भारत के दौरान यानी कि 1888 उदों जिला बिजनौर के सियोहारा उत्तर प्रदेश के उन्हों का जन्म होया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय अंदोलन के जेड़ा उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से अपना बहुत वड्डा प्रभाव पाया, दुनिया नू कदी भी नहीं भुल सकते। 1914 दे विच उन्होंने अपने समुदाय दे विच ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़े होके ऐदां दा स्टैंड लिया। असफ अली ने उस वेले प्रवी कौंसल तो इस्तीफा दे दिता, क्योंकि तुर्की खिलाफत के पक्ष के विच उन्होंने समर्थन दिता। और सब तो वड्डा इन्होंने असहयोग दे विच एक जिहड़ा अधिनियम दे तौर ते उस नू देखिया जांदा सी उसका साथ दिता, और 1914 दे विच वापस भारत आ गए। ते भारत आउण तो सब तो पहला असफ अली जी ने राष्ट्रवादी अंदोलन दे विच एक बहुत ही उगे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ते अंदोलनकारी दे रूप दे विच शामिल होके देश नू आज़ाद करवाउण दे लई काम करना शुरू किया। उन्होंने 1919 दे विच खिलाफत अंदोलन च शामिल होकर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। 1921 दे विच महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग अंदोलन दे विच उन्होंने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई। और सब तो वड्डी घटना जिसे लई उन्होंने जाने जाता है 8 अप्रैल 1928 नू, जदों भगत सिंह जी ते बटुकेश्वर दत्त द्वारा असैम्बली दे विच बंब सिटन की घटना नू लैके उन्हां नू जदों गिरफ्तार किया गया सी, तां उन्हां दे बचाव पक्ष के वकील के तौर पर असफ अली जी उन्हां दे पक्ष के वकील बने, ते उन्होंने भगत सिंह जी ते बटुकेश्वर दत्त दे मुद्दे की मुकदमे की पैरवाई की। उन्होंने भारत के लिए स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर बहुत काम किया। 1942 च गांधी जी के आह्वान से भारत छड़ो अंदोलन में शामिल होए, और आखिर भारत के राजदूत के रूप के भी उन्होंने सेवा दिती। और 1989 के भारत डाक ने उन्होंने सम्मान के एक डाक टिकट जारी की,
ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਰੁਣਾ ਅਸਫਲੀ

मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ।

भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, है मुझे सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे, युद्ध ये सम्मान का है मान रहना चाहिए।

सच लिखना आसान नहीं होता, हर लफ्ज का हिसाब देना पड़ता है। मंटो जैसा बनने के लिए जमाने से भी लड़ना पड़ता है। तुसी सुन रहे हो गुड मॉर्निंग जलंधर, मुस्कुराते हुए चादियां चुस्कियां लेंदे हुए ते दिल तो जुड़े हुए हो जी FM रेनबो जलंधर दे नाल, एंड वेलकम बैक RJ पूजा टोहानी दे नाल। इंजॉय कर रहे हो तुसी इंफरटेनमेंट आई सफर। दोस्तों, कई लोग जिंदगी जीउंदे ने पर कुछ लोग ऐसे हुंदे ने जो अपने लफ्जा नाल पूरा जमाना जी लेंदे ने। ते अज असीं गल हुण करन जा रहे हां इदां दे लेखक दी जिसने समाज दीआं उहनां सच्चाईआं नूं लिखिआ जिन्हां वल लोग देखणा नहीं सी चाहुंदे। एक इदां दे उग्गे उर्दू कहानीकार, उन्होंने अपनियां निक्कियां कहानियां इदां दीआं लिखिआं। टोबा टेक सिंह, शाहकार, ठंडा गोश्त, इन्हें दिल उरां नूं जाणिआ जांदा है। सादत हसन मंटो, उन्होंने 22 निक्कियां कहानियां दे संग्रह लिखे, 5 रेडियो नाटक संग्रह ने उन्हां दे, 1 नावल, 3 निजी स्केच संग्रह ते 3 लेख संग्रह उन्हां दे छपे ने। उन्हां दीआं इह लेखणियां कई भाषावां दे विच लिखियां जा चुकियां ने, छापियां जा चुकियां ने। ये ऐसा नाम है जिसने इंसानियत दे जख्मां नूं शब्द दित्ते, सआदत हसन मंटो। मंटू साहब का जन्म अज यानी कि 11 मई 1912 नूं पंजाब दे लुधियाणा जिले दे समराला दे इलाके दे विच होया सी। बचपन तो वह बहुत शरारती रहे। रिबेलियस नेचर दे आपां कह सकते हैं। पढ़ाई विच बहुत ही ज्यादा खास दिलचस्पी नहीं रही उन्होंने, इत्थे तक कि वह कई बार उर्दू के इम्तिहान च भी फेल हो गए। तो किसी ने सोचा भी नहीं कि उर्दू दे विच इन्ना सोहना लिखणगे। और ये बंदा अगे जाके उर्दू साहित का सितारा बनेगा जिहड़ा बार बार छोटियां जिहां उर्दू दियां इम्तिहान दे विचो एग्जाम्स दे विचो फेल हो जांदा है। ते इह गल सानू सिखाउंदी है दोस्तों कि जिंदगी विच जिहड़ी शुरुआती नाकामी हुंदी है ना, वो आखरी हार कदी भी नहीं हुंदी। मंटू साहब नूं लिखण दी प्रेरणा मिली एक जर्नलिस्ट ते राइटर अब्दुल बारी अलिक तों। फिर वो बॉम्बे चले गए, उत्थे उन्होंने फिल्म्स लई स्क्रिप्ट्स भी लिखियां। यानी हाँ जी, मंटो साहब का कनैक्शन बॉलीवुड के नाल भी रहा है। उस वेले उन्होंने बहुत सारे फिल्म मैगजीन से स्क्रिप्ट से भी काम किया। बॉम्बे उन्होंने बहुत प्यारा रहा क्योंकि उत्थे काम नू देखा जाता, दोस्ती ज़्यादा सी काम नू लैके। फिर आया 1947, देश दी वंड, लोकां दे घर वंडे गए, दिल वंडे गए, रिश्ते टुटे, और ये दर्द मंटो दे अंदर बहुत डूंगा वस गया। उस सरहद पार चले गए पर बॉम्बे नू कदी नहीं भुले। एक बार मंटो जी ने क्या भी सी कि बॉम्बे छोड़ दिया है लेकिन बॉम्बे मेरे अंदर से कभी नहीं निकला। सोचो किन्ना डूंगा दर्द ते प्यार होएगा उन्हां नू उस जगह दे लई। टोबा टेक सिंह कहानी सानू पुछदी है कि की सरहदां सिर्फ जमीन वंडदियां नहीं जां इंसान भी। दोस्तों, सच बोलना आसान नहीं हुंदा और मंटो कदे भी सच बोलण तो ते लिखण तो पिछे नहीं हटे। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹੋਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ

0: प्ले करन जा रही है, सो जाना कितने नहीं है, स्टे ट्यून्ड रहो एफएम रेनबो दिनाल एंड हियर कम्स द लास्ट ट्रैक ऑफ गुड मॉर्निंग जलंधर.
1: जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा, जुनू के आग में उबलती मैं

0: बैरल हो गई ने।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने नागरिकां नूं विवेकपूर्ण खर्चा ते मुड़ विचार करन दी अपील कीती क्योंकि देश वधदी विश्वव्यापी ऊर्जा लागतां कारण आर्थिक दबाव दा सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने नागरिकां नूं खाण वाले तेल दी खपत घटाउण लई भी कहा अते किसानां नूं विदेशां तों दरामद कीते जाण वाले रसायनिक खादां ते निर्भरता घटाउण दी अपील भी कीती। प्रधानमंत्री अज पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर की मुड़ उसारी के मौके पर अज सोमनाथ अमृत पर्व 2026 हिस्सा लेंगे। वह भगवान सोमनाथ की पूजा और कुंभ अभिषेक करेंगे और बाद में एक जनतक इकट्ठ को संबोधन करेंगे। प्रधानमंत्री के एक रोड शो का भी प्रोग्राम है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री बाद में वडोदरा जाएंगे जिथे वह शाम 6 बजे के करीब सरदार धाम होस्टल का उद्घाटन करेंगे। इस होस्टल में 1000 मुंडिया ते 1000 कुड़ियां लई रिहायश सहूलतां दे नाल नाल एक केंद्रीय डाइनिंग हॉल लाइब्रेरी ते ऑडिटोरियम वर्गियां सहूलतां शामिल ने। श्री मोदी सरदार धाम कॉम्पलैक्स के अंदर वख-वख सहूलतां दा दौरा भी करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के हिमंत बिस्व शर्मा को राज विच नवी सरकार बनाने लई सद्दा दिता है। यह असम विच लगातार तीजी एनडीए सरकार होगी। एनडीए विधानसभा पार्टी के सर्वसम्मति नाल नेता चुने जाने तो बाद श्री हिमंत होर गठजोड़ नेतावां दे नाल लोक भवन विच राज्यपाल नूं मिले ते सरकार बनाउण दा दावा पेश कीता। श्री आचार्य कल श्री शर्मा ते मंत्री परिषद के नवे मैंबरां नूं अहुदे ते सरकारी भेद गुप्त रखण दी सहुं चुकाउणगे। सहुं चुक समारोह खानपाड़ा ते वैटनरी कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड विच कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अते भाजपा प्रधान नितिन नवीन समेत होरां दे समारोह विच शामिल होण दी उम्मीद है। हालिया विधानसभा चोणां विच एनडीए ने 126 मैंबरी विधानसभा विचों 102 सीटां जीतियां सन। भाजपा ने 82 सीटां जीतियां सन अते गठजोड़ पार्टियां असम गण परिषद ते बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10-10 सीटां जीतियां सन। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी अज राज सकत्रेत नबन्ना विखे मंत्रिपरिषद की मीटिंग की प्रधानगी करेंगे। शनिचरवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड विखे मुख्यमंत्री नाल अहुदे अते गुप्ता की सहुं चुकन वाले 5 मंत्रियों विच विभाग बंडे जाण की उम्मीद है। नवी मंत्रिपरिषद की मीटिंग विच भारतीय जनता पार्टी के चोण वादिया ते चर्चा होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवे चुने गए विधायक इस हफ्ते बुधवार, वीरवार ते शुक्रवार को सहुं चुकणगे। पश्चिम बंगाल विच कांग्रेस अते खब्बीपक्खी पार्टियां ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक सांझा विरोधी मोर्चा बनाउण दी ममता बनर्जी की तजवीज़ नूं रद्द कर दिता है। एक संदेश विच ममता बनर्जी ने कांग्रेस, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी अते कट्टरपंथी खब्बीपक्खी पार्टियां समेत सारिया विरोधी पार्टियां नूं भाजपा के खिलाफ एकजुट होण दा सद्दा दिता सी। इस दौरान भाजपा के नवे चुने गए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की अपील नूं अप्रसंगिक दसदिआं खारिज कीता ते कहा कि इसका हुण कोई सियासी महत्व नहीं है। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा XHandle @AIRRN जलंधर। भारत विश्व पद्धर से स्थापित नवीनयोग ऊर्जा समर्था विच तीजे स्थान पर है। मॉर्गन स्टैनली की एक नवी रिपोर्ट मुताबिक भारत की नवीनयोग ऊर्जा तब्दीली बाहरी निर्भरता को घटाने विच मदद करेगी, पर इसकी सफलता इस गल्ल ते निर्भर करेगी कि देश स्थानक तौर पर सूरजी सैल वेफर अते पॉलीसिलिकन वर्गे मुख्य हिस्सों का उत्पादन किन्नी जल्दी करता है। नवी अते नवीनयोग ऊर्जा मंत्रालय के अंकड़ों मुताबिक घरेलू सूरजी मॉड्यूल समर्था मार्च 2024 38 GW तो वध के मार्च 2025 विच 74 GW हो गई है। सोलर सेल समर्था भी 9 GW तो वध के 25 GW हो गई है। रिपोर्ट यह भी उजागर करती है कि भारत हुण भी प्रमुख हिस्सों लई दरामद ते बहुत ज्यादा निर्भर करता है। उत्तराखंड प्रशासन ने चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं ते सैलानियों नूं राज विच खराब मौसम की स्थिति के मद्देनज़र सुचेत रहने ते सुरक्षा मापदंडों की पालना करने की अपील की है। मौसम विभाग ने कल ते बुधवार नूं उत्तराखंड के वख-वख हिस्सों खास करके पहाड़ी इलाकों में खराब मौसम ते मीह बारे ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं ते सैलानियों नूं अपील की है कि अपनी यात्रा दौरान मौसम बारे ताज़ा जानकारी लेंदे रहन अते उस मुताबिक ही यात्रा की योजना बनाउण। उन्होंने भी कहा कि सारे संबंधित सरकारी विभागों

प्रोग्राम नाल जुड़ो। कानूनी मदद टैली लॉ ते टोल फ्री नंबर 1-44-54 ते वेबसाइट www.tallylaw.in तो प्राप्त की जा सकती है। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

पता करके, लेकिन बहुत ज्यादा प्लीज लंबे मैसेजेस ना करियो, फिर ना कहियो कि मैम मैसेज शामिल नहीं कीते या फिर किसने मैसेज रह गए। मैसेज छोटे लेकिन थोड़े मीनिंगफुल होने, है ना। अगर तुसी कुछ कंक्लूड करना भी है तो प्लीज़ ट्राई ये करियो, बहुत ज़्यादा लंबियां गल्लां नहीं, आपां एक तो डेढ़ या मैक्सिमम दो मिनट दे विच आपां गल खत्म कर दईए। साफ स्पष्ट अपना ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दियो 9855101027 ते, यानी कि 9855101027 ते। दिल तो दिल तक दे आवाज़ दे विच एहसास अनेक हुंदे ने, ते बस ओही एहसास कर दियो शेयर।

जी दोस्तों, प्रोग्राम गीत बहार तुसी ते मैं बिल्कुल त्यार बर त्यार, क्योंकि जी प्रोग्राम जे होवे बहुत वधिया ते नाल दी नाल सुनिया सुनिया आवाज़ां ते सोहणे सोहणे सिंगर्स जिन्हां ने अपनी आवाज़ दा लोहा मनवाया होया है उस समय तो लैके उस दहाके तो लैके अज तक भी उन्हां दी आवाज़ उन्हां दा चेहरा और उन्हां दे गीत जड़े ने ओ सानू हमेशा फॉरएवर जड़े ने याद दिवाउंदे ने उन्हां दी प्यार दी ते नाल दी नाल उस एहसास दी जिहड़ा कि तुहाडा एफएम रेनबो दी नाल है। 102.7 एफएम रेनबो ते प्रोग्राम चल रहा जी गीत बहार। एंड हुण मैं गल करन जा रही हाँ फिल्म फिजा, जो कि एक इमोशनल बॉलीवुड फिल्म से जिस विच फैमिली पेन एंड इमोशनल रिलेशनशिप नू बहुत ही सीरियस तरीके नाल दिखाया गया है। इस फिल्म दे विच ना ऋतिक रोशन एंड करिश्मा कपूर अते जया बच्चन की एक्टिंग नू लोकां ने बेहद पसंद किया है। जी बिल्कुल, फिजा यानी कि होप सैक्रीफाइस ते फैमिली लव वाली ये फिल्म है। एंड ए फेमस वाले सॉन्ग आजा माही एंड महबूब मेरे याद तो कुछ आया है ना, इस करके मैं थोड़े थोड़े हिंट तुहानू दिनी रहनी है कि तुहानू कुछ याद आवे ते बाकी तुहाडी याद नू तरोताजा करन दे लई। प्रोग्राम है जी गीत बहार 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके

को समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गांव वालों, अब मैं जा रहा हूँ एफएम रेनबो लाने। मां कसम, सुनते रहिए 102.7 FM Rainbow।

आओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। बिल्कुल जी, जिस तरह सफ़र ज़िंदगी दा कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी होंदा है, तो कभी सीधे रस्ते भी सानू मिल जाते हैं। कभी भी सानू हालातों नू कोसना नहीं चाहिए, कभी भी सानू रस्तियां तो डरना या डगमगाना नहीं चाहिए। कोशिश करते रहो, अगे वधदे रहो, क्योंकि जिहड़ी मंजिल ते तुसी जाना है उते तुसी एक ना एक दिन जरूर पहुँच जाओगे।

उससे कभी तेरी बात भी होगी। वो प्यार है ही इतना प्यारा, वो जो प्यार है तेरा वो है ही इतना प्यारा, जिंदगी रही तो उससे तुम्हारी मुलाकात भी होगी। सच्ची जी, जेकर तुसी किसी नू किधरे प्यार कर दियो, उन्हों जता नहीं सकते, उन्हों एहसास नहीं करा सकते, पर समा आने ते अपने आप ये एहसास प्यार खूब अपने आप जड़े ने सामने आए जाते हैं। किशोर कुमार जी होना दी आवाज़ दे विच एक होर प्यारा जिहा गीत प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़ दे विच।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां

0: चली पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां पे जंदी आखरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: छोटा जिहा कमर्शियल ब्रेक ते ब्रेक तो बाद मुड़ तो हाजिर हाँ। रणदीप है तुहाडे नाल, दी प्रोग्राम चल रहा जी मिड डे मेलोडीज़।

जी दोस्तों, कंटिन्यू कर दें जी प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़। हमें कहाँ शौक़ था मोहब्बत का, हमें कहाँ शौक़ था मोहब्बत का, नज़रें तुमसे मिली और तुमसे ही मोहब्बत हो गई। 102.7 FM दी प्रोग्राम कंटिन्यू कीता जा रहा जी, क्योंकि जी समा जिहड़ा 10 मिनट दा रह गया, ते 10 मिनट दे विच कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, ते कुछ कुछ तो होना बनता है।

जी दोस्तों, मोहब्बत की है तुम्हारे लिए। बिल्कुल जी, उसी तरह जिस तरह तुहानू मोहब्बत है FM रेनबो दे नाल, आकाशवाणी जलंधर दे नाल, ते हर उस प्रोग्राम दे नाल जिहड़ा तुसी सुनदे हो ते पसंद करदे हो। जी बिल्कुल, और प्यार जिहड़ा ना ये होना भी चाहिए, क्योंकि प्यार जिहड़ा है अपने नाल सब तो पहले, तो फिर नाल दी नाल अपने उन्हां दोस्तां दे नाल, अपने हर उस रिश्ते दे नाल होवे ते वाकई ज़िंदगी बहुत सोहनी लंघदी है। अनुराधा पौड़वाल ते मनहर उदास दी आवाज़ दे विच तुसीं ये ट्रैक इंजॉय कीता जी। प्रोग्राम चल रहा मिड डे मेलोडीज़, ते समां जिहड़ा है वह हुण मैं फड़ नहीं सकदी, उन्हें भज्जे जाना है ते आपां उन्हूं तुरदे रहण देना है, क्योंकि मैं भी उहदे नाल नाल ही चलना है। जी बिल्कुल, तुसीं समझ गए होवोंगे कि स्टूडियो की कड़ी ते 1:55 ते 38 सैकेंड हो चुके ने, ते इस प्रोग्राम यानी कि मिड डे मेलोडीज़ का लास्ट वाला ट्रैक आप सब ने इंजॉय करना है जी। बिल्कुल 102.7 MHz से, तो मैं हुण दिओ इजाज़त, फिर जल्दी मिलन का वादा करके जानी हाँ, तो जल्द आवांगी किसी होर दिन। पर ये सारे शो जिहड़े तुसीं अज मेरे नाल इंजॉय किए ने, फिर आप इस तरह इनू कंटिन्यू करांगे। स्टे ट्यून 102.7 MHz।

से हो तो निखर जाते हैं रिश्ते, एक तरफा कोशिशों में अक्सर बिखर जाते हैं रिश्ते, जहां हो प्यार और सम्मान वहां मजबूत हो जाते हैं रिश्ते, और जहां लहजे में बस बेरुखी हो वहां खामोश हो जाते हैं रिश्ते। सो बस फिर दोनों पासियों प्यार मोहब्बत का सिलसिला बरकरार है जी, और ये प्यार जिहड़ा इतना गूढ़ा हो चुका कि हर बार प्रोग्राम दे विच पहली हाजरी लगवाउण दे लई साडे दोस्त पहुँच जाते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया राम स्वरूप जी अपनी शायरी साडे तक सांझी करन दे लई, और इन्हां दे पिछे ही आण पहुँचे ने जी लोहा बाजार मलेरकोटला तो राकेश कुमार जी। कहिंदे जी ना तुसीं दूर जाओ ना अहीं दूर जावांगे, अपने अपने हिस्से दी दोस्ती निभावांगे, बहुत वधिया लगेगा जिंदगी दा ये सफर, तुसीं सानूं याद रखना, असीं तुहानूं याद करके मुस्कुरावांगे।

प्यार भरी नमस्कार अर्ज कर रहे ने साडे दोस्त, कहंदे कि अभी कुछ अरमान जिंदा है सीने में, सामने मत आया करो, मोहब्बत जाग जाती है। मैं कहा जी, जे साडे सामने आने दे नाल तुहाडे अंदर दी मोहब्बत जागदी है, असी तां फिर वार वार तुहाडे अगे आवांगे। सो साडे दोस्त ने जी गुखी भाड़ीवाल, पिंड भाड़ीवाल, अमृतसर, पंजाब तों। सो जी, मैनूं लगदा कि बैक टू बैक तीन चार शायरियां हो गईआं, हुण एक खूबसूरत जिहा गीत, नहीं गीत आपां सुन चुक्कियां, गज़ल सुनदे आं जी आपां। जगजीत सिंह ते चित्रा जी दी आवाज़ च गाई हुई गज़ल, ये तेरा घर ये मेरा घर कितना प्यारा घर।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकियां दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।

0: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं अनुराधा, लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। दोस्तों आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है एडल्ट इम्यूनाइजेशन, यानी वयस्कों या बड़ों में टीकाकरण। आमतौर पर बच्चों के वैक्सीनेशन से लोग परिचित हैं, लेकिन बड़ों में टीकाकरण कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज के विषय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रताप सिंह, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल, नई दिल्ली। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए।
0: जी डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है उससे जुड़ा पहला मेरा सवाल है कि एडल्ट्स के लिए कौन सी वैक्सीन है जो लेनी चाहिए।
1: जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो WHO ने इस बार थीम दिया है वैक्सीनेशन के लिए, वो थीम है फॉर एवरी जनरेशन वैक्सीन्स वर्क। ओके, तो जैसे हम जानते हैं कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप में जो बच्चों में है हमारे पास ऑलरेडी इस्टेब्लिश टीके हैं, लेकिन अब वैक्सीन जो है वो अडल्ट्स में है, वो बुजुर्गों में है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी उपलब्ध हैं। तो जैसे हमने देखा कोविड के टाइम में कोविड-19 वैक्सीन जो है वो अवेलेबल थी, जो बड़ों में बच्चों में सभी को दी गई। हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, निमोनिया के लिए जो है निमोकोकल वैक्सीन है, पोलियो की जो वैक्सीन है वो यूजुअली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में दी जाती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो अडल्ट्स में भी दी जाती हैं। ठीक है, बुजुर्गों के लिए जैसे अभी जूस्टर वैक्सीन अभी अवेलेबल हो गई है पिछले 1-2 साल में, वेरिसेला वैक्सीन है, वेरिसेला यूजुअली एडल्ट्स और पीडियाट्रिक एज ग्रुप में यूज होती है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जैसे MMR वैक्सीन है यूजुअली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में है, लेकिन कुछ ग्रुप में जो है वो बड़ों में भी दी जाती है। येलो फीवर वैक्सीन है जिसे हम ट्रेवलर वैक्सीन भी बोलते हैं, जैसे किसी स्पेसिफिक ऐसे रीजन में आपको ट्रेवल करना है आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, जहाँ पे येलो फीवर का एंडेमिसिटी है, तो उसमें जो है येलो फीवर वैक्सीन जो है हमारे कंट्री में, हमारे देश में दी जाती है।
0: जी, बहुत सारी बातें हैं अभी आपसे जानने को, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। फिलहाल यहाँ लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, आगे की बातें इसके बाद।

0: आज हम चर्चा कर रहे हैं वयस्कों में टीकाकरण पर। मैं जानना चाहूंगी, मेरा अगला सवाल है कि किन बीमारियों से बचाव संभव है टीकाकरण के द्वारा?
1: जी देखिए, बहुत सारे जो बैक्टीरियल डिजीजेज होते हैं, वायरल डिजीजेज होते हैं, उनमें ये जो टीकाकरण है वो काफी हद तक फायदेमंद पाया गया है। ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस जो पीलिया होता है, लीवर की डिजीजेज होती हैं। ठीक है, अगर आप समय रहते हुए वैक्सीनेशन करा लेंगे तो आगे फ्यूचर में जो है पीलिया होने के चांसेस बहुत कम है। निमोनिया है, निमोनिया के लिए हिप वैक्सीन अवेलेबल है, निमोकोकल वैक्सीन अवेलेबल है। और ये जो वैक्सीन हैं ये बहुत अच्छा काम करती हैं जब किसी को अंडरलाइन कोमॉर्बिडिटीज हो या कोई और तकलीफ हो, जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं, सीकेडी वाले पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, बुजुर्ग हैं, अगर उनको ये टाइमली वैक्सीन दी जाएँ तो उनमें जो इन्फेक्शन होने की वजह से सेहत पे जो फर्क पड़ता है उससे बहुत अच्छा बचाव होता है। ठीक है, अभी रिसेंटली जो है डेंगू के लिए भी वैक्सीन जो है हमने अप्रूव की है। जैसे देखते हैं हमारे यहाँ डेंगू का एपिडेमिक 2 से 3 साल में एक बार आता रहता है, दिल्ली एनसीआर या बाकी जो और भी प्रदेश हैं उनमें। अभी रिसेंटली जो है डीसीजीआई ने क्यू डेंगा करके वैक्सीन है जो एडल्ट्स में और बच्चों में, उसको अप्रूव किया है। ठीक है, तो ये अभी अवेलेबल हो गया है।
0: तो आगे हम बात करें डॉक्टर साहब, तो देखा ही जाता है कि जब बचपन होता है तभी वैक्सीनेशन हो जाता है, लेकिन क्या उसका असर बड़े होने तक बना रहता है या दोबारा से, समझ लीजिए कि अगर किसी ने बचपन में नहीं कराया तो क्या बड़े होकर भी वो सारे वैक्सीनेशन कराए जा सकते हैं?
1: देखिए, जो वैक्सीनेशन है हमारा तो बहुत एस्टेब्लिश टीकाकरण प्रोग्राम है, जिसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बोलते हैं, वो जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है हमारे जो देश में। ठीक है, तो जीरो से जैसे ही बर्थ होगा बच्चे का उसी समय से टीकाकरण स्टार्ट होता है। लेकिन जो वैक्सीन है, कुछ जो वैक्सीन होती हैं उनके द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, ठीक है, उनका एक समय होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है। कुछ वैक्सीन होल लाइफ काम करती हैं, कुछ वैक्सीन हैं जो 3 साल काम करती हैं, कुछ वैक्सीन हैं जो 10 साल काम करती हैं। तो जो होल लाइफ काम करती हैं वैक्सीन, उनसे तो प्रोटेक्शन आपका अडल्ट में या बुजुर्ग अवस्था तक भी रह सकता है, लेकिन जिनका इम्यूनिटी प्रोटेक्शन 5 साल का है, 10 साल का है, ऐसे केसेस में जो है बूस्टर वैक्सीनेशन किया जा सकता है, जिससे उनका जो प्रोटेक्शन का टाइम है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो ओवरलैप तो डेफिनेटली होता है, जिनका वैक्सीनेशन शेड्यूल कंप्लीट हुआ है चाइल्डहुड में, तो एडल्टहुड में उनका प्रोटेक्शन उनको मिलता है।
0: जी, तो श्रोताओं, आज हम आपको जागरूक कर रहे हैं कि यदि आप भी वयस्क हैं और आपने बचपन में ध्यान नहीं दिया है, वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो क्या वैक्सीनेशन आपके लिए जरूरी है, टीकाकरण कौन सा आप करवा सकते हैं और किस उम्र तक करवा सकते हैं, तमाम जानकारी डॉक्टर साहब आपको दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, बात हम सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि यही पहला चरण होता है बच्चा जब धरती पर आता है, तो उस दौरान माँ को कौन कौन से वैक्सीनेशन जरूरी होते हैं?
1: देखिए, प्रेगनेंसी में कोई भी लाइव वैक्सीन आपको नहीं लेनी है, अवॉइड करनी है। जो एस्टेब्लिश हमारा प्रोग्राम है प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन के लिए, वो 2 वैक्सीन को एब्सोल्युटली जो है उसमें रिकमेंड करता है। एक फर्स्ट वैक्सीन है, उसमें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, और सेकेंड जो वैक्सीन है वो टेटनेस के लिए वैक्सीन है। तो ये तो एब्सोल्यूट हो गया कि जो आपको लेना ही लेना है। इसके अलावा जो नॉन लाइव वैक्सीन हैं वो जरूरत के हिसाब से प्रेगनेंसी में भी दी जा सकती हैं।
0: HPV वैक्सीन भी आजकल चर्चा में है, क्या प्रभाव होता है इसका, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, आपका

0: क्या बात है जी, तुहाडी आवाज़ 'च पंजाबी 'च गीत सुन के बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये गीत हिंदी दे विच रिकॉर्ड होया। सो जी, बहुत शुक्रिया जी, ते बहुत ही खूबसूरती दे नाल तुसी इस नूं जेड़ा ये पंजाबी भाषा दे विच गा के सुनाया जी, क्या ही बात है। अच्छा जनाब, पूछना चाहवांगे जी कि पालमपुर 'च खास की करदे हो जी तुसी उत्थे?
1: सर पालमपुर च मेरा इत्थे बेटा रहिंदा है, बहू है, जानी नूह रानी, आपां तां पंजाबी च गल करांगे,
0: क्या बात है। हाँ जी,
1: ते दो पोते ने, उहनां दा अखां दा हस्पताल है,
0: अच्छा जी,
1: दोनों आई सर्जन ने, ते बस मैं इत्थे कदे पंजाब चला जाना, कदे इत्थे हिमाचल आ जाना,
0: ते पंजाब
1: बस
0: च केड़ी
1: इदां
0: जगह
1: ही
0: जी?
1: पंजाब हिमाचल दे विच तुरिया फिरदा रहना।
0: क्या बात है, तुसी दोनों जड़ियां हद्दां ने तुसी उन्हां नूं जोड़ के रख्या होया जी ना।
1: बिल्कुल जी, और पंजाब वर्गी कोई थां नहीं और हिमाचल वर्गी सुंदर कोई थां नहीं।
0: क्या बात है जी, खूबसूरत है जी, बस यही देखो छोटे छोटे अंग ने साडे देश दे, ते इना करके साडा समुच्चा देश बहुत खूबसूरत है।
1: बड़े भागा वाले जी, साडे आपां नूं इहो जे

0: 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर ते दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है युवाणी। मैं हां तुहाड़ी दोस्त आरजे नेहा
1: ते मैं हां आरजे दोस्त तुहाड़ी दीक्षा।
0: ते दोस्तों वेला हो गया साडे अज दे सब तो एक्साइटिंग सैगमेंट दा जिहदा सारिआं नूं इंतजार हुंदा है। ते किहड़ा सैगमेंट स्टार्ट हो गया दीक्षा?
1: फिल्मी नंबर 1
0: जिहदे विच अज असीं लै के आए हां ओल्ड क्लासिक बॉलीवुड म्यूजिक्स, मतलब ओल्ड इज़ गोल्ड बॉलीवुड। दोस्तों जिन्ना मर्जी असी नए गाने विच खो जाइए बट ओल्ड इज़ ऑलवेज़ गोल्ड। असी हमेशा कुछ नवा लैके आने हैं बॉलीवुड तो रिलेटेड, कुछ नवे गाने एक्टर्स के बारे गलबात करते हैं, पर अज असी करांगे कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, वह महसूस किए जाते हैं। उन्हां दीआं धुनां विच पुरानियां यादां महसूस, मासूम जिहा मुहब्बतां ते जिंदगी दे सोहणे पल लुके हुंदे ने। अज असी लैके आए हाँ एक खास म्यूजिकल सफ़र, ओल्ड इज़ गोल्ड बॉलीवुड। दोस्तों तुसी बस कुछ ज़्यादा नहीं करना है, असी तुहानूं सुनावांगे एक म्यूजिक या फिर कोई गीत जिहदे विच तुसी गैस करना है कि यह गीत केड़ी मूवी दा है, किहड़ा सिंगर है जिसने इस गीत नूं गाया है। तो बस तुसी सानूं कॉल करके जवाब देना है, तो स्टूडियो दा नंबर भी तुहानूं दस दिंदे हां 81 2342 0181 143 174। तो दोस्तों तो तुसी सानूं साडे फेसबुक ते पेज ते मैसेजेस भी कर सकते हो, सानूं मैसेंजर ते ते ऑन एयर ऐप ते साडे प्रोग्राम्स भी सुन सकते हो। ते फटाफट अपने फोन अपने हत्थां च चक लो ते रेडी हो जाओ।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in। एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

नमस्कार, पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात च सोमनाथ अमृत पर्व समारोह नूं कीता संबोधन। किया सोमनाथ अमृत पर्व अगले 1000 सालां लई देश दी प्रेरणा होवेगा। सरकार ने कहा कि किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कोई भी कमी नहीं है ते देश कोल 60 दिनों का कच्चा कोला ते तेल कुदरती गैस ते 45 दिनों का एलपीजी भंडार मौजूद है। पंजाब राज चोण कमिशन वालों सूबे च 26 मई नूं होण वालियां 105 नगर निगमां नगर कौंसलां ते नगर पंचायतां चोणां लई चोण प्रोग्राम का ऐलान। वोटां की गिणती 29 मई नूं होवेगी। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने 10वीं जमात का नतीजा ऐलानिया। पास फीसदी 94.52 फीसदी रही। कुड़ियां वालों मुंडियां नूं पिछे छड्डदिआं फरीदकोट दे जैतो दी हरलीन शर्मा रही अव्वल। जलंधर पुलिस कमिश्नर ने जिले च अमन कानून की व्यवस्था बनाई रखने लई समूह रेस्टोरेंट क्लब ते होर अजियां लाइसेंस शुदा खाण पीण वालियां थावां अद्धी रात 12 बजे तक मुकम्मल बंद करन दे हुकम जारी कीते ने। भारतीय तकनोलॉजी संस्थान रोपड़ ने अज VUI कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड नाल एक समझौता पत्र ते दस्तखत कीते। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने वकारी आलमी यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स फॉर इनोवेशन च यूनिवर्सिटी ब्रांड ते प्रतिष्ठा दी श्रेणी च विश्व पद्धर ते 78वां स्थान प्राप्त कीता। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले च काकीरा लाहरू सड़क ते एक कार हादसे च 6 सैलानियों की मौत, 4 होर गंभीर जख्मी। मौसम विभाग वालों अज पंजाब दे वख-वख हिस्सों च हनेरी झक्खड़ नाल बिजली लिशकण बारे ऑरेंज अलर्ट ते इस तो बाद 15 मई तक येलो अलर्ट जारी। आईपीएल क्रिकेट च अज पंजाब किंग्स दा मुकाबला धर्मशाला च शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स नाल हो रहा है। एसएनएफएम न्यूज़ हेडलाइंस हुण तों कुछ पहलां बाद तुसीं साडा अगला प्रोग्राम इंजॉय करोगे।

हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल की हाल चाल ने उम्मीद करदा कि मेरे सारे लिसनर्स एकदम ठीक ठाक ते तैयार बर तैयार ने मेरे नाल इस सफर ते चलन दे लई इस एंटरटेनिंग सफर ते मेरे नाल निकलन दे लई 102.7 एफएम रेनबो ते हरीश हाजिर है और इस वेले एफएम कड़ी ते 7:03 ते 54 सैकेंड हो चुके ने और ठीक टाइम ते तुहाडे कोल एंट्री मार के मैं पहुंच गया और बिल्कुल भी देरी नहीं और साडा ये पहला पड़ा जिहड़ा साडा अज दा 11 बजे तक इसे तरह तुसी मेरे नाल इस एंटरटेनिंग इनफोटेनमेंट सफर नूं इंजॉय करोगे बहुत सारी गल्लां बहुत सारे गाने और बहुत सारी एंटरटेनमेंट दे नाल भरपूर इस साडी जिहड़ी शाम रहण वाली है और तुसी मेरे नाल इस सफर दा मजा लोगे पूरी तरह दे नाल और पहला साडा जिहड़ा अज दा प्रोग्राम है पड़ाव जिहड़ा साडा हुंदा है एंटरटेनमेंट दा फिल्मी दुनिया जिस दा आगाज हो चुका है और फिल्मा तो असीं सारे बहुत देखते हैं मतलब अजकल वो टाइम नहीं है कि सानू हफ्ते बाद एक फिल्म वेखनी पवे मतलब जदों दिल साडा करदा जदों असीं चाहिए जदों असीं मतलब देखना चाहिए कोई भी फिल्म नवी तो नवी फिल्म महाराज असीं वेख सकते हैं अज मतलब कोई भी इदां दी साडे कोल रोक पाबंदी सानू कोई भी नहीं हैगी और साडे कोल हर फैसिलिटी मौजूद है कि असीं कुछ भी देख सकते हैं फिल्मां खास करके और अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स ने मोबाइल फोन लैपटॉप्स जिहड़ियां असीं वड्डियां वड्डियां LEDs लाइयां घर और मिनी थिएटर की तरह फील लैने नो डाउट सब कुछ साढ़े कोल अवेलेबल है बट उन्हां फिल्मां दे पिछे दी जो कहानी है वो इत्थे पता लगती है महाराज प्रोग्राम फिल्मी दुनिया दे विच हरीश थोड़े नाल उह गल्लां शेयर करता है उन्हां हस्तियां दी गलबात शेयर करता है जिन्हां दी फिल्मां असीं वड्डे पर्दे ते वेखदे हां और उन्हां नूं फिल्मां दे विच कम करदे हां ते असीं वेखदे हां विलनगिरी करदे हीरोगिरी करदे असीं देखदे हां खुश हुंदे हां और बड़े एडमायर हुंदे हां बट उन्हां दी जाती जिंदगी किवें दी है किवें उन्हां ने इत्थों तक पहुँचने लिए संघर्ष किया यही साडा प्रोग्राम है और अज भी अजिही हस्ती की गलबात करांगे वो हस्ती जो अज भावें साडे विच मौजूद नहीं है बट अज ही दे दिन उन्हां दा बर्थ होया सी जन्म होया सी और असी FM रेनबो दे वल्लों उन्हां नूं प्यार भरी श्रद्धांजलि देवांगे उन्हां दे इस जन्म दिवस ते ओ कमाल दा एक्टर विलन ऑफ बॉलीवुड जिन्हें अपनियां अखां दे नाल अपनी अदाकारी दे नाल ऐसा जादू बिखेरिया कहिंदे ने कि एक्टिंग जिहड़ी है ना वो अदाकार जिहड़ा जरूरी नहीं कि सोहना होवे जरूरी नहीं कि बहुत ब्यूटीफुल होवे हैंडसम होवे तां ही वो वधिया एक्टर हुंदा बट उस शख्स ने अपनी एक्टिंग दे दम ते वो कर विखाया जिन्हों करन दे लई हर शख्स संघर्ष करता है और रब को दुआवां मंगता है उन्हें भी दुआवां मंगियां सी शिद्दत दे नाल इस सफर ते निकलिया सी और उसनू मंजिल मिली मैं गल कर रहा सदाशिव अमरा पुरकर दी सदाशिव अमरा पुरकर जिन्हां ने अपनी अदाकारी दा लोहा ऐसा मनवाया कि असी उन्हां दी एक्टिंग दे दीवाने हो गए बहुत सारी फिल्मां अर्ध सत्य फिल्म होवे भावें सड़क फिल्म दे विच ओ महाराणी वाला कैरेक्टर होवे ट्रांसजेंडर दा कैरेक्टर जिहड़ा उन्होंने निभाया सी हुण पता लग गया होएगा तुहानूं मैं किहनां दी गल कर रहा सदाशिव अमरापुरकर उन्हां दे बारे अज असीं गल करांगे अज ही दे दिन उन्हां दा बर्थ होया सी और किवें उन्हां ने फिल्मां दे विच आ के पहली फिल्म तो ही अवार्ड जितया किवें नाटक करते किवें फैमिली अपोज करती सी सारियां गल्लां जिहड़ियां ने वह मैं उन्हां दी लाइफ दे नाल जुड़ियां होईयां तुहाडे नाल शेयर करांगा और नाल नाल उन्हां दीआं फिल्मां दे गाने भी तुहाडे तक पहुँचाए जाणगे आओ फिर हुण फिलहाल एक ट्रैक सुन

0: लगाकर यहाँ तक पहुँचा है।
1: यार तेरी मेरी दोस्ती इतनी गहरी है कि ये पैसे लेते वक्त मुझे बहुत शर्म आ रही है, लेकिन क्या करूँ, पैसों के मामले में मैं बहुत कमीना।
2: कुछ लोग चिराग के लव की तरह हो।
3: बिल्कुल जी बिल्कुल, और इदां दा चिराग, इदां दी रोशनी सी उना दी, जिसने हर एक कोने नू रोशन कर दिता। रेनबो ते हरीश नाल तुहाडे और शो चल रहा है, तुहाडा फेवरेट वाला फिल्मी दुनिया। और फिल्मी दुनिया प्रोग्राम दे विच असी गल कर रहे हैं सदाशिव अमरापुरकर जी दी, और सदाशिव अमरापुरकर जी ने ओ फिल्मा कीतियां जिन्हां दे विच उन्हां ने इदां दे कैरेक्टर निभाए कि ओ फिल्मा तां हिट हैगियां ही हैगियां, नाल नाल उन्हां दी लुक, उन्हां फिल्मा दे विच जो उन्हां ने गैटअप लिया सी, और उन्हां दे डायलॉग्स और उन्हां दे ओ कैरेक्टर्स अज भी फेमस। इश्क फिल्म जेकर तुसीं वेखी होए, अजय देवगन, आमिर खान, जूही चावला, काजोल वाली, तां उस विच फादर बने सी अजय देवगन दे। हाँ जी, उही फादर जिहड़ा पहला प्यार करन तो रोकदा, फिर प्यार करन दिंदा, फिर बाद दे विच पलटी मार जांदा, उही चलाक और विलनिश फादर जिहड़ा उहदा कैरेक्टर निभाया सी उस वेले सदाशिव अमरापुरकर ने। सानू बड़ा गुस्सा आउंदा सी कि इह किहो जिहा फादर है और किदां दी इहने इस फिल्म दे विच एक्टिंग कीती है। उही कमाल दा, बड़ा ही भैड़ा जिहा लगदा सी सानू विलन, ओ सदाशिव अमरापुरकर जी ही सी। और जेकर तुसी सड़क फिल्म वेखी है तां सड़क फिल्म दे विच ओ महारानी दा ट्रांसजेंडर दा जिहड़ा कैरेक्टर निभाया सी ओ सदाशिव अमरापुरकर ने ही निभाया सी, और उहनां दी कमाल दी अदाकारी इन्नी अल्टीमेट सी, जदों स्टेज ते विलन दा नैगेटिव कैरेक्टर अदा करदे सी तां वड्डे वड्डे डायरेक्टर्स जदों नाटक स्टेज ते उहनां नूं परफॉर्म करदिआं वेखदे सी तां उहनां नूं लगदा सी कि इस बंदे दे विच कुछ गलबात हैगी है, और वह गलबात नज़र आई और वह गलबात देखी एक राइटर ने। हम दसदिआं कि जदों फैमिली दी सपोर्ट मिली, मुंबई आ जांदे ने सदाशिव अमरापुरकर, और इत्थे आ के नाटक करने उहनां ने शुरू कर दिते तां कुछ पैसे मिलने शुरू हो गए। और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद भी ये चीज़ दसी कि विजय तेंदुलकर साहित्य के खेत्र के बड़ा नाम है उन्हों का, खास करके मराठी थिएटर के और मराठी साहित्य बहुत सारे नाटक लिखे ने उन्होंने, बहुत सारे उपन्यास लिखे ने, फिल्मों दी स्क्रिप्ट्स भी लिखिया ने उन्होंने, और उन्हों का एक नाटक उस वेले कर रहे सी, और विजय तेंदुलकर बड़ी चंगी तरह जानते सी उस वेले सदाशिव। और विजय तेंदुलकर ने उस वेले एक स्क्रिप्ट लिखनी स्टार्ट की सी एक नामी डायरेक्टर, मैं गल कर रहा गोविंद नहलानी की फिल्म अर्धसत्य की, अर्धसत्य की फिल्म लिखनी शुरू की सी उस वेले विजय तेंदुलकर ने, और जानते सी वो अमरापुरकर नूं, और उन्होंने कहा कि यार मैं एक स्क्रिप्ट लिख रहा, ये एक करैक्टर है, मैनू लगता कि तू बड़ा वधिया कर सकदा, तो मैं तेरी गल डायरैक्टर दे नाल करांगा, तो जे गल बन गई ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਰੋਲ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਜਚੇਗਾ ਉਹ ਰੋਲ। ਰਮਾ ਸ਼ੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਰੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਜੇ ਤੇਂਦੁਲਕਰ

0: मछली कोलाम।
1: क्या बे?
2: मैं तुझसे हजार बार कह चुका हूँ और आज आखिरी बार कह रहा हूँ, और आखिरी बार के बाद जो बार आता है उस बार से कह रहा हूँ कि मेरे रास्ते से हट जा।
1: अबे तेरा कौन सा रास्ता? रात को नींद में चलने वाला लकड़ा भग्गा, तेरा कौन सा रास्ता बे?
2: बिजली का रास्ता।
3: बिजली का रास्ता, आग फिल्म दा डायलॉग। और इस फिल्म दे विच जिहड़ी जुगलबंदी सी दोवां दी, कादर खान साहब और सदाशिव अमरापुरकर दी, जो इन्होंने कॉमेडी कीती सी ना,

पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात च सोमनाथ अमृत पर्व समारोह नूं कीता संबोधन, कहा सोमनाथ अमृत पर्व अगले 1000 सालां लई देश दी प्रेरणा होवेगा। सरकार ने कहा है कि किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कोई कमी नहीं है ते देश कोल 60 दिनां दा कच्चा तेल ते कुदरती गैस ते 45 दिनां दा एलपीजी भंडार मौजूद है। पंजाब राज चोण कमिशन वल्लों सूबे च 26 मई नूं होण वालियां 105 नगर निगमां, नगर कौंसलां ते नगर पंचायतां चोणां लई चोण प्रोग्राम दा ऐलान। वोटां दी गिणती 29 मई नूं होवेगी। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने 10वीं जमात दा नतीजा ऐलानिया, पास फीसदी 94.52 फीसदी रही। कुड़ियां वल्लों मुंडियां नूं पिछे छड्डदिआं फरीदकोट दे जैतो दी हरलीन शर्मा रही अव्वल। जलंधर पुलिस कमिश्नर ने जिले च अमन कानून की व्यवस्था बनाई रखने लई समूह रेस्टोरेंट क्लब ते होर अजिहियां लाइसेंसशुदा खाण पीण वालियां थावां अद्धी रात 12 बजे तक मुकम्मल बंद करन दे हुकम जारी कर दिते ने। भारतीय तकनोलॉजी संस्थान रोपड़ ने अज VUI कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड नाल एक समझौता पत्र ते दस्तखत कीते। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने वकारी आलमी यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स फॉर इनोवेशन च यूनिवर्सिटी ब्रांड ते प्रतिष्ठा की श्रेणी च विश्व पद्धर ते 78वां स्थान प्राप्त किया है। हिमाचल दे चंबा जिले च काकीरा लारू सड़क ते एक कार हादसे च 6 सैलानियों की मौत, 4 होर गंभीर जख्मी। मौसम विभाग वालों अज पंजाब दे वख-वख हिस्सों च हनेरी झखण नाल बिजली लिशकण बारे ओरेंज अलर्ट ते इस तो बाद 15 मई तक येलो अलर्ट जारी। इस एफएम न्यूज हेडलाइंस हुण तों कुछ कु पलां बाद तुसीं साडा अगला प्रोग्राम इंजॉय करोगे मसाला मिक्स।

107 FM रेनबो ते हरीश नाले थोड़े और शो चल रहे हैं मसाला मिक्स और नाल नाल मौज मस्ती भंगड़ा भंगड़ा पैंदा रहना चाहिए और मोबाइल के उत्ते वीडियो शीडियो तो असं बनाने बहुत वीडियोज़ बनाने और फोटोज़ वगैरह भी क्लिक करते रहने खास करके अजक दौर ही महाराज वीडियो बना के इंस्टा शिंस्टा और रील शील पाँ कि नहीं पाने कि नहीं आ हा हा हा हा मैनू सब पता है और जो असी वीडियोज़ फोटोज़ क्लिक करते रहने सानू पता नहीं लगता अं डाटा कलैक्ट करते रहने तो फिर एक दिन आ के साडा फोन टाइम बोल जाता मतलब कहण दा है कि फोन जड़ा है ओह कहिंदा है कि हुण बस यार मूँह भर गया मैं यार ओ मैनू समझ नहीं आउंदी वीडियोज़ भी एक दूजे नूं कहिंदियां ने भैणे तू थोड़ी जी अगे हो भैणे तू थोड़ी जी अगे हो फोटो भी एक दूसरे नूं खिसकन खिसकन के लिए कहिंदियां ने बट जदों सानूं पता होएगा करना की है तो असीं उदों ही इन्हां नूं थोड़ी जी हवा लवावांगे बेचारे नूं थोड़ा जिहा हल्का साह दवावांगे और इस करके भावें लैपटॉप होवे साडा भावें साडे फोनस होण एंड्रॉयड फोनस होण भावें सानू जिन्नी मर्जी जानकारी हुंदी है ना पर ज़्यादातर जेकर मतलब बहुत ज़्यादा तुसी गैजेट फ्रेंडली हो आई नो और बहुत ज़्यादा टैक्निकल नॉलेज सारयां नू हैगी है पर बहुत ज़्यादा कुछ इदां दे लिसनर साडे हैगे ने जिन्हां नू ए पता नहीं लगता कि फोन स्लो क्यों हो गया यार क्लिक कीता ही 3 सैकेंड तो भी ज़्यादा समा हो गया एक क्लिक कीता ही हाय हाय एक मिनट हो गया हूँ जाके खुला इदा बहुत वार हुंदा और ये तां हुंदा खासकर एंड्रॉयड दे उत्ते जदों तुसी अपने फोन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो और खास करके जदों बहुत ज़्यादा जिहड़ी असी ऐप चलाने ना वट्सअप ऐप खास करके चलाने और उत्थे असी जिहड़ियां सानू कोई फोटोज़ भेजदा वीडियोज़ भेजदा कोई न्यूज़ भेजदा असी डाउनलोड करने हैं सुन देखण दे वास्ते मोबाइल दे विच ही पई रहिंदी आ वो चीज़ वो वीडियो फोटोज़ और इस करके डाटा भरता रहिंदा उदे लई तुसी की करना जे खास कर जेकर लैपटॉप की गल करिए विंडोज़ लैपटॉप ते तुसी विंडो प्लस आर मतलब रन वाली जिहड़ी थले उहनू खोलना ओपन करना और परसेंटेज टैंप परसेंटेज ए टाइप करना और एंटर मारना और सारी टैंपरेरी फाइलां जिहड़ियां ने वह डिलीट हो जाएगियां या फिर परफेक्ट टाइप करके एंटर मारो तां वी तुहाडियां टैंपरेरी फाइल्स डिलीट हो जाएगियां या क्लीनर दे विच जा के तुसी वो कमांड है उहनू उहदे विच जा के तुसी अपनियां जंक ते कैशे फाइल्स जिहड़ियां हुंदियां ना उहनां नूं डिलीट कर सकदे हो एंड्रॉयड फोन दे विच वी तुसी अपनियां फाइल सैटिंग्स दे विच जा के कैशे और जंक फाइलां नूं हमेशा डिलीट रखो और खास करके जिहड़ियां गूगल फाइल्स हैं ना उहदे विच जंक और डुप्लीकेट फाइल्स हुंदियां ने उहनां नूं भी डिलीट करो और टाइम टू टाइम साफ करते रहा करो सफाई करते रहा करो अपने फोनस की और इस करके खास करके जिहड़ियां असीं फाइलां डाउनलोड कर लैंदे ना स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं या कोई किसी ने फोटो भेजी हुंदी है या कोई होर वीडियोज़ साढ़े तक पहुँचदी हैं असीं उन्हां नूं स्टोर करी रखते हैं अननसैसरी चीज़ों नूं डिलीट कर दिओ खास करके जिहड़ियां टैंपरेरी फाइल्स हुंदियां ने जंक कैशे फाइल्स हुंदियां ने ना ये साढ़े फोनस नूं लैपटॉप्स नूं स्लो कर दियां ने इस करके महाराज इन्हां नूं स्लो करो मतलब सॉरी फास्ट करो तो इन्हां नूं खाली करो ता ही तो महाराज तुहाडी गड्डी तेज़ चलेगी ता ही तो फिर रीलां शीलां छेती बनणगियां और एक बार क्लिक करन ते छेती तुहाडा फोन रिस्पोंड करेगा है कि नहीं और जदों ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੋ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਟਾਫਟ ਰਿਸਪੋਂਡ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲਈਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏ ਨਾ ਸਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਫੋਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਫੋਨ ਚੇਂਜ

पेश ने एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। सरकार दा कहना है कि देश च किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कोई कमी नहीं है। 60 दिनों का कच्चा तेल, 60 दिनों लिए कुदरती गैस ते 45 दिनों का एलपीजी भंडार मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव आने वाले हजार सालों लई भारत के दृष्टिकोण नूं प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर मुड़ उसारी दे 75 साल पूरे होने ते महापूजा की। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी रुजगार ते आजीविका मिशन ग्रामीण कानून 2025 नूं लागू करन लई एक नोटिफिकेशन जारी कर दिता है। पंजाब राज चोण कमिशन वालों सूबे दियां 105 स्थानक संस्थावां नूं चोणां 26 मई नूं करवाउण दा ऐलान कीता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अज कहा है कि भारत मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर मुक्त टोल वसूली सिस्टम की शुरुआत नाल तकनोलॉजी आधारित शाहराह प्रबंध दे एक नवे युग च प्रवेश कर गया है। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने 10वीं जमात का नतीजा ऐलानिया। पास फीसद 94.52% रही। कुड़ियां वालों मुंडियां नूं पिछे छड्डदियां फरीदकोट के जैतो की हरलीन शर्मा रही अव्वल। जलंधर पुलिस कमिश्नरेट ने जिले च अमन कानून की व्यवस्था नूं बनाई रखने लई समूह रेस्टोरेंट क्लब ते होर अजिहियां लाइसेंस शुदा खाण पीण वालियां थावां अद्धी रात 12 बजे तक मुकम्मल बंद करन दे हुक्म जारी कर दिते ने। भारतीय तकनोलॉजी संस्थान रोपड़ ने अज VUI कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड नाल एक समझौता पत्र ते दस्तखत कीते। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने वकारी आलमी यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स फॉर इनोवेशन च यूनिवर्सिटी ब्रांड ते प्रतिष्ठा दी श्रेणी च विश्व पद्धर ते 78वां स्थान प्राप्त कीता। मौसम विभाग वालों अज पंजाब दे वख-वख हिस्सियां च हनेरी झखण नाल बिजली लिशकण बारे ओरेंज अलर्ट जारी। ਇਸ ਸਨ ਐਫ ਐਮ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਦਿਲ ਚਾਹਤਾ ਹੈ।

बिल्कुल जी बिल्कुल, किसी से बिना वाकई नहीं गुजरने चाहिए। और दिल चाहता है प्रोग्राम भी तुहाडे बिना नहीं मारा सफल हो सकता, चल सकता, क्योंकि तुहाडा प्यार इस प्रोग्राम नू मिलता है और असी इस प्यार दे नाल वध फुल रहे हैं कट्ठे ही। 107 FM रेनबो ते शो चल रहा दिल चाहता है और तुहाडे मैसेजेस दा सिलसिला जारी है। आओ एक होर मैसेज पढ़ते हैं। नमस्कार जी, फिल्म राम तेरी गंगा मैली, गीत मुझे बुलाए तेरी बाहें, फरमाइश करता गाँव कलाना, तहसील भादरा, ज़िला हनुमानगढ़, राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, सतीश कड़वासरा, योगेश कड़वासरा और युधव कड़वासरा, ये मैसेज मेरे तक पहुंचा रहे हैं, थैंक यू सो मच। एक अगला मैसेज पढ़ते हैं जी। सर प्रेम नमस्कार, कोई भी गीत में शामिल करें। नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिल्का से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज है जी। नमस्कार जी, कोई भी गीत सुना दें। धनौरी तेली वाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, हार्दिक धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच मेरे तक मैसेज पहुँचाने के लिए। और आज फिर राम तेरी गंगा मैली का ये ट्रैक इंजॉय कर दें जी।

कोई ऐसे भी आता है क्या, जैसे लंबी बेचैनी के बाद आती है चैन की एक गहरी सी सांस। थक कर निराश बैठे किसी शख्स का थामने से हाथ, आता है जैसे उसमें फिर से उठ जाने का विश्वास। किसी को पहली बार देखते ही होठों पर आती है जैसे मुस्कुराहट, जैसे तन्हाई से भरे मेरे कमरे में किताब के गिरने की कोई आहट। तुम आना तो ऐसे ही जैसे ना पाने की इच्छा, न खोने का डर, तुम्हारे होने से जो आती हो बस एक राहत। वो राहत तुम्हारे होने से है, सिर्फ एक तुम्हारे होने से।

लौट आते हैं पेड़ भी सारे वापस बीजों में, कहीं और उगने की अभिलाषा में। लौट आता है सुख भी वापस एक असमाप्य लगने वाले दुख के बाद। सुखवती नदियों में भी लौटता है बारिश के बाद पानी, बसंत लौटता है फूलों।

के साथ समेटता हुआ पतझड़ के सूखे पत्ते और लौटती हैं जैसे स्मृतियां कविताओं कहानियों में एक लंबे वक्त के बाद। वैसे ही लौट आना तुम भी वापस प्रेम में एक अंतहीन लगने वाले विरह के बाद। लौटोगे ना, क्योंकि लौट आना प्रेम में इतना मुश्किल नहीं है। लौटोगे ना, कहीं

लगने वाले विरह के बाद लौटोगे ना, क्योंकि लौट आना प्रेम में इतना मुश्किल नहीं है। लौटोगे ना, कहीं ये नजरें फेरोगे तो नहीं।

तुम होती तो बताता तुम्हें कैसे कैसे मैं सजाता तुम्हें, आंखों में रात का काजल, गालों पे सुबह की धूप मलता, होठों पे शाम का सुर्ख रंग, माथे पे लगाता सितारे और चांद सिलकर पहनाता तुम्हें, गले में बाहों का हार होता, कलाई में मेरा प्यार होता, कानों में पहनती मेरी सांसें, जुल्फें सुलझाती उंगलियां, पैर में धड़कन पहनाता तुम्हें। तुम होती तो बताता तुम्हें कैसे कैसे मैं सजाता तुम्हें, तुम होती तो मैं बताता तुम्हें।

कई बार वो पुकारता है मुझे, सुनो ये मन, और मेरे प्रत्युत्तर हां के बाद चुप हो जाता है। उसे कुछ पूछना नहीं होता, दरअसल वो तसल्ली करता है कि मैं उसके आसपास हूं। अगर ऐसा कोई शख्स आपकी जिंदगी में है तो आप खुशकिस्मत हैं, जो एक तसल्ली मांगता है आपके साथ होने की, आपके पास होने की, और उसे फिक्र होती है आपकी और आपके साथ की। अगर गलती से भी हाथ छूट जाए तो लगता है कि वो हमसे दूर चला गया। हाथ छूटने भर की दूरी बर्दाश्त नहीं होती उसको, है ना। बड़े लकी हैं आप अगर आपके पास वो शख्स है तो।

एक प्यार का नगमा है जिसका आगाज हो चुका है, और हरीश दे नाल तुहाडा ये सफ़र जिसका आगाज होया सी 7 बजे, और ये सफ़र आ पहुँचया ठीक 10:30 बजे, 10:30 ते 1 सेकेंड हो चुका है, और हरीश नाल है तुहाडे, और इस सफ़र दे विच साडा बड़ा एक प्यार का नगमा है जिथे ये रात और इस समा होर भी खूबसूरत बनेगा तुहाडा मेरे और इना रेट्रो गाणियां दे नाल। आओ फिर आगाज करते हैं इस गाने दे नाल। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 102.7 FM रेनबो।

हर शाम लौट आती है एक चिड़िया बगीचे में लगे अमरूद के पेड़ पर वापस। पेड़ कहीं नहीं जाता, ना ही जा सकता है, इसलिए वह उस चिड़िया की दृष्टि से देखता है दुनिया को। चिड़िया अपनी चहचहाहट में भर लेती है दुनिया के सभी दृश्य और सौंदर्य। पेड़ घर है उस चिड़िया का और चिड़िया पेड़ की दुनिया। हर कोई किसी न किसी अभाव की पूर्णता है, हर कोई संपूरक है एक छोटे से रिश्ते से। जीवन का कितना गहरा बिंब रचती है ये प्रकृति, है ना। हम भी किसी के पूरक हैं, हम भी किसी चीज के अधूरे हैं।

कमरे की एक दीवार पर टंगा कैलेंडर जो हर बीतते दिन में तुम्हारी याद दिलाता है। हवा का कोई झोंका आता है और पन्ना उसी तारीख पर ठहर जाता है जिस दिन कभी मैं ठहरा था तुमसे अलग होकर। अब भी उस तारीख को देर तक देखता हूं मैं, जैसे कोई रास्ता हो जहां से तुम लौट सकती हो, मगर वक्त चुपके से आगे बढ़ जाता है और मैं उसी दिन में थोड़ा सा रह जाता हूं। सिर्फ तुम्हारी याद में, तेरे ख्यालों में।

हर रोज सुबह खाली हाथ लेकर उठ रहा, टूटे हुए ख्वाबों के बोझ तले खुद को जिम्मेदारियों की भट्टी में झोंक देना, स्वयं की राख के ढेर को दिल में कहीं चुपके से दबा देना और हंस कर कह देना सब ठीक है। शायद यही जीवन है ना। हाँ, यही जीवन है।

कई बार ऐसा होता है बस मौन ही अंत में रह जाता है, अपने भीतर की विकलता किसी अंधेरे की आगोश में गुम हो जाती है। शब्द अपनी सीमाएं तलाश कर लेते हैं, आत्मा जैसे ठहरना सीख जाती है। यही है प्रेम को सीख जाना, प्रेम को पा जाना, प्रेम को हासिल कर जाने की परिस्थिति।

तुमसे जरा सा प्रेम पाने की उम्मीद में कितना अपमान सह लिया। खुद को कोसते हुए मैंने अपना ही आईना खराब कर लिया। हर जगह मैं ही गलत हूं ये सोचकर खुद को ही दरकिनार कर दिया। मुस्कुराना जिंदगी दा दस्तूर है और इदां दी बहुत सारियां चीज़ां जिंदगी च होंदियां, पर उस तो दिल छोटा कदे भी नहीं करना और हमेशा हर चीज़ तो कुछ सीख के अगे वधना ही जिंदगी दा नाम है। और असी भी अगे वधदे हां और इस प्रोग्राम नूं इत्थे वाइंड अप करन दा वेला आ गया। इस सफर नूं इत्थे खत्म करदे हां और जिंदगी दे सफर च तुहाडे नाल दोबारा मुलाकात जरूर होएगी। मैनूं दिओ इजाजत, बाय, टेक केयर। ए लास्ट ट्रैक इस प्रोग्राम दा तुहाडी पेशे नजर है।